0: This is the R.D. Burman Gulzar special on Bollywood Billboard on Lotus FM. The concept of nurturing a melody was one of R.D. Burman's best-kept secrets. Gulzar explains that concept in this next clip, where he talks about how R.D. Burman was obsessively attached to his music and believed that simply composing a track was not enough. For him, the melody needed to be nourished, played continuously in various gatherings, and allowed to cook until it achieved its perfect form.
1: And then he would keep on singing a song. बाकी सारे पूरी नशिस्त में बैठे हुए हैं जितने म्यूजिशियंस हैं फिर भी गा रहे हैं अगली नशिस्त में भी बैठ रहे हैं उसके बाद भी गा रहे हैं एंड ही यूज्ड टू से दिस कि गाना सिर्फ कंपोज कर लेने से तैयार नहीं होता गाने को नरिश करना पड़ता है उसकी परवरिश करनी पड़ती है जब उसे गाते रहोगे तो उसकी नरिश होता है गाना तब जाके गाना तैयार होता है इसे पकाना पड़ता है

0: हाय
1: दिल मस्त शीशा मस्त सबू मस्त जाम मस्त है तेरी चश्मे मस्त से हर खासो आ